0: हेलो, दादी की शादी का स्केड्यूल है, कन्नू दीदी ने चेक करने के लिए भेजा है।
1: पापा जी, इसको सिर्फ मनहूस खबर लाने के लिए पैदा किया है।
2: दादी की शादी इज ऑन बिग स्क्रीन सर्किट, गो चेक इट आउट। वी रेट द मूवी 6 out of 10। इज बॉलीवुड बिलबोर्ड, इज लोटस एफएम, सलामे इश्क सीक्वल इज इन द वर्क्स। वी विल टॉक मोर अबाउट दैट ऑन अ हाफ टाइम फीचर, प्लस अ स्नीक प्रीव्यू ऑफ अ न्यू वरुण धवन सॉन्ग। राइट नाउ वी आर प्लेइंग फॉर यू द सॉन्ग व्हिच एंटर्ड हियर एट नंबर 10 लास्ट वीक। इट इज बाय सोनू निगम फ्रॉम अ न्यू मूवी टाइटल्ड गिनी विद सनी 2। अरे तुम पे ही प्यार आ गया।